से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

प्यारी शाम है ते देखो यार ऑलरेडी वीकेंड आ गया ऑलरेडी एंड ऑफ सितंबर दे दिन चल रहे हैं सो अजकल दिन भी थोड़े जे गर्म सर्द जे चल रहे हैं ते सारे नु हल्के फुल्के मिठे मिठे जे कोल्ड भी हो रहे हैं ठंडा भी लग रही है बच्चे स्कूले जा रहे हैं स्कूल तो बाद भी फिर तेन पता ही है भी बच्चे कितने ना कितने थोड़ी बहुत ही एक वायरस या जर्म्स घर भी लै आते सो चलो कोई गल नहीं जिस अपने इम्यून सिस्टम नो स्ट्रोंग रखो ते माइंड सैट थोड़ा स्ट्रोंग रवे आई थिंक यही मेन गल है हूँ तो जिंदगी च यार बड़ी चीजा होंगे ने एडी कि गल है सो लोने रौन क्या कर दें गलां बातें नंबर अपना थोनू याद ही है तो सुनाओ फिर किमें हो तेरे नाल हस की लिया मुंडिया भी तू तो मगर ही पै गया मेरे हुण जे बीबा तू हसी है।

0: reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसें लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उआं के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जेड़ा सारे फोक डांसी को जो सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जो फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस, ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश होंगे। तो सुनो इस एपीसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना माता माता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वह है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है उस स्पेशली किया जाता है देवते दी स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। ते कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंदी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल च कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियां भी करुड़ दे नैट, पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिदे च जिन्हें भी भाई ने सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टेप करते हुए बड़े हल्के

सुना दे डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ये जिया कि मैं तुसी दसिया नाग देवता दी स्तुति च भी ये किया जाता है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके उत्थे ज़्यादा किया जाता है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप इनवाइट करते हैं तो अपने कल्चर ही प्रमोट करते हैं कुछ ना कुछ बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्ते तुस देखी सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा गे अच्छा लगदा है सारे एक ड्रेस सैमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा गे अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: इंश्योरेंस बहुत महंगी हो गई, कार ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्ता ने सारा बजट हिलाता।
1: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
0: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानू 416-618-2761 416-618-2761।

0: लिए।
1: ग्रैंड होम फर्नीचर एड्रेस 6685 थॉमकन रोड मिसिसागा नंबर 6472620000 ग्रैंड होम फर्नीचर
0: जेड़ा ग्रैंड फर्नीचर दलाउणा बलिए।
2: ओ दलजीत दुसान बड़ी भाई आप क्या लेने आए हो?
3: शुद्ध देसी घी।
2: लो पाजी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
3: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
2: नानक घी पाजी।
3: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड सो प्योर इट्स नानक।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: आपा घर ता ले लिया, हुन मॉर्गेज बारे भी सोचिए। घरां दी मार्केट उपर थले होई जांदी है।
8: मैं मिलके आया मॉर्गेज इंडस्ट्री दे मोस्ट ट्रस्टवर्दी जस भुल्लर नूं, जेड़े 24 घंटे च घर दी क्लोजिंग करवा देंदे आ। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या ट्रक लोन या कोई भी बिजनेस लोन चाहिदा उस विच भी हेल्प करदे ने। जस भुल्लर कमर्शियल मॉर्गेज विच स्पेशलाइज करदे ने।
7: तां फिर छेती नंबर दियो जस भुल्लर दा
8: 416-732-2611 416-732-2611। नाम याद रखी जस भुल्लर।
9: दोस्तों जिहड़े रेडियो प्रोग्राम चढ़दी कला दे नाल स्टूडियो दा नंबर 416-233-7368 416-233-7368। सिटी दे विच इलैक्शन ते असीं सारे कैंडीडेट्स नूं एक समझदे आ ते बराबर दा मौका देना चाहुंदे आ ते साडी कोशिश आ कि हर कैंडीडेट नूं खुल्ला सद्दा तुसीं आ के अपने विचार रखणे आ, साडे स्रोतियां दे रूबरू होणा तां असीं खुल्ला सद्दा दे रहे हां। मेरा नंबर है 647-921-2032 647-921-2032। इसे कड़ी दे विच साडी गलबात हो रही सी रिपू दमन जी नाल जो कि सिटी कौंसल लई कैंडीडेट ने वार्ड 7 ते 8 चो सोसाना लाइन दे उत्ते जो चुके ने। रिपू जी सत श्री अकाल जी एंड वेलकम।
10: थैंक यू वेरी मच हरवीर भाई जी और थानू ते थोड़े सारे प्रोग्राम सुनने वाले लिसनर्स नू मेरी प्यार भरी निघी सत श्री अकाल। जिवें कि तुसीं दस्सिया मैं रिपू दमन सिंह ढिल्लों ब्रैम्पटन दे वार्ड 7 and 8 तों एज ए सिटी कौंसलर इलैक्शन रन कर रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर।
9: बहुत धन्यवाद जी। ते जिहड़े वैसे तां बहुते तुहानूं ऑलरेडी परिवार जानदे ने, जिहड़े 2% 5% 10% नहीं जानदे, तुसीं आपदी इंट्रोडक्शन च की कहना चाहोगे? कौन हो तुसीं, किन्ना टाइम इस वार्ड च रहिंदे नूं हो गया ते की बैकग्राउंड आ, की कम काज आ?
10: बिल्कुल हरवीर भाई जी, मैनू अप्रोक्सीमेटली 2 दहाके तो उपर दा टाइम हो गया जी। अपने ब्रैम्पटन दे विच ही रहिंदे हन क्योंकि जिस दिन मैं पहले दिन कैनेडा लैंड कीता सीगा सो ब्रैम्पटन ही मैं अपना घर बनाया ते 23 साल हो गए ने मैनू रहिंदे नू। और मैं एज एन प्रोफेशनल इमीग्रेशन कंसल्टेंट भी हाँ जी। मैं अपना मेरा अपना बिजनेस हैगा मिसिसागा दे विच और उस तो इलावा मैं अपने मेरे

0: करो 6475041557 या मैसेज करो पंजाबी लहरा दे इंस्टाग्राम पेज ते। कस्टमर बनना चाहते हो नो बफरिंग नो फ्रीजिंग 4K सर्विस लई पुराना बॉक्स कदे भी अपग्रेड अपडेट करवाओ तुसी ढिलो वीडियो नू कॉल करो। मेन प्रोडक्ट ढिलो वीडियो दा गुरबाणी रेडियो इंडिया लैके जाने वास्ते बेस्ट गिफ्ट जिस विच संपूर्ण पाठ हैगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा नितनेम दीयां सारीयां बाणियां ने ढाडी वारा ने 300 शब्द ने 110-220 दा चार्जर अते ईयर प्लग दे नाल नाल 20 घंटे दी बैटरी टोरंटो एयरपोर्ट तो लैके थोड़े पिंड तक दा थोड़ा साथी ढिलो वीडियो दा गुरबाणी रेडियो IPTV दी टॉप दी सर्विस या ढिलो वीडियो गुरबाणी रेडियो गो रोड एबनीजर सत्ते दिन खुले ने 11 to 8 905-204-1313 जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 6475041557।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
0: SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਅਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984। किसी ने भी अगर कार, वैन, SUV लेना, टॉप टॉप टॉप दा नाम एको है, वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार, वैन, SUV कोई भी लेना होवे, एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 ते कॉल करो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 647-504-1557।

सो कास खूबसूरत सुविधा खूबसूरत लोग खूबसूरत मलकांची सी चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यू जर्सी तक सन जैसे सुन रहे हो अमेरिका के कैनेडा के सन तुम बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज के यानी कि सारनिया लंडन किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज गोल्फ मिल्टन या जी टी ए एंटायर तो ग्रेटर टोरंटो एरिया या इस नाल सानू साउथ के सुनते हो 403 हाईवे के उपर ब्रैनफर्ड सिमको काउंटी या हैमिल्टन तक तो हैमिल्टन तो लैके नैगरा फॉल तक नाल सन सुन रहे हो ईस्ट के बेलवल ओशवा कर्टिस पॉमरविल हैम्पटन होंदे हुए सानू तुसी पिकरिंग एजेक्स होंदे हुए टोरंटो तक सारा सुन रहे हो नॉर्थ के सानू बैरी तो लैके तुसी मस्कोका काउंटी के यानी कि ओरेलिया एंड 400 हाईवे के उपर तो 11 हाईवे के उपर सानू सुनते हो ग्रेवनहर्स्ट तक तो तकरीबन 450 किलोमीटर का एरिया जी टी ए का जिहड़ा असीं क्रॉस करते हैं प्लस अमेरिका पा के 1000 किलोमीटर के रेडियस ईस्ट वैस साउथ नॉर्थ में सानू सुनते हो डिजिटल एएम फ्रीकुएंसी कई शहरों में एक्सक्लूसिविटी चलती है यानी कि तुसीं अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हो लंडन किचनर वाटरलू कैम्ब्रिज मैं हैमिल्टन गया हैमिल्टन जाके पूछा कि इंडियन डॉक्टर चाहिए चार पाँच बंद टाइम हॉटन्स से रोक के तो सब ने कहा कि इंडियन डॉक्टर वास्ते लोग जो ब्रैम्पटन मिसिसागा दे एरिया जाते हैं यानी कि पंजाबी बोलते डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं इस तरह बहुत सारे सर्विसिज ने बाहरले शहरों से लंडन वगैरह तो लैके किचनर वाटरलू वुडस्टॉक तक लोग वो सर्विसिज ब्रैम्पटन तो मिसिसागा तो लेंदे ने क्योंकि रिलायबिलिटी ते क्रेडिबिलिटी है तो लोग इतने आते हैं तुसीं अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तुहाडे बिजनेस नूं असीं उन्हां शहरां पिंडां कस्बियां तक लैके जांदे आ उन्हां लोकां तक जिहड़े काम कर रहे हैं तो रेडियो सुन रहे हैं तो बिजनेस में सुन के तुम लाहा दे रहे हैं कोई भी जानकारी मैंने 416-518-3200 से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं चलते हैं एक सफर के वाल जो बहुत खूबसूरत हमेशा आगाज उस परम पुरख परमेश्वर के नाम ऊट आसरे जिस के नाम ऊट आसरे आगाज दुनिया की हर शह का उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा चढ़ती कला वाला निरपो निरवैर रहेगा मुस्कुराहट चिर दा हिस्सा रहेगी रोशनी रस्ते दिखावेगी तुसी चलते रहोगे।

0: रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने।
1: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नु
0: 905-671-2000
1: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपने नु सच कर दिखाओ।

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 90545126000. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
2: Oh yaar, ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiya ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne, full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
2: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हुने कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600।
3: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
4: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
6: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
7: रेडियो आवाज
8: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ब्रैम्पटन वासियों, हुण बदलाव दा समां है, हुण तुहाडी आवाज सिटी हाल तक पहुंची। सुरक्षा पहली तरजीह, वध रहे प्रॉपर्टी टैक्सां ने परिवारां ते बहुत वड्डा बोझ पाया है। मैं टैक्सां विच राहत लई पूरी पूरी कोशिश करांगा। हद तों वध वधी हुई माइनर वेरियंस फी नूं घटाउण लई आवाज बुलंद करांगा अते लोकां दे पैसे दी जिम्मेवार वरतों मेरी पहली तरजीह होगी। सिटी हाल विच पारदर्शिता अते जवाबदेही ये मेरिया मुख तरजीहां हन। तुहाडा भरोसा मेरी जिम्मेवारी, तुहाडी आवाज मेरी ताकत। प्रेमपाल गिल, रीजनल कौंसलर उम्मीदवार, वार्ड नंबर 2-6 ब्रैम्पटन। धन्यवाद।
3: जेकर थोड़ी एज 40 साल तो घट है ते अगले 20 साल लई तुसी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दा कॉम्बो प्लान लेना चाहते हो ता $99 ले सकते हो। ज्यादा जानकारी लई तुसी मैनु कॉल कर सकते हो 6477563340 6477652340।
4: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: आज खुश नबात हो गया था।
1: ओ ता होना ही है जदों ते नो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तै नकदा बनदा ही है।
2: हां मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
1: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड्स बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले टिलो वीडियो को गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिए
3: चल क्या रहे यहाँ पर
1: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है
1: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जा tillobideo.com होर कोई सेवा
5: भाई जी ट्रक तो हूं मैं चंगी तरह चला लग पाया हूं सोचता भी कोई यूज ट्रक ही ले लवा पर समझ नहीं आती भी कितों लवा
6: वो ए सोचने वाली कड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नू कॉल कर ओए ओदे तो वधिया कोई नहीं
7: जी हां जे तुहानू यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसी एना तो ले सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
8: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice.

0: health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: एचके मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एचके मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एचके मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए एचके मूवर।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन

Brampton या फिर तीसरी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखें स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: घर तो आपां एड्डा वड्डा इन्ना सोहना ले लिया, हुण अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी सब इत्थों ही लवांगे। इन्ना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीनियां च करनी है, वो भी बिना किसे ब्याज दे। होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828-905-450 2828.
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

0: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
1: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
2: जिंदगी दे सफर विच मुश्किल तां किते भी आ सकदी है, एक्सीडेंट या सट लगन कारण जिंदगी दी गड्डी खलो गई है, काम ते वी नहीं जा सकदे, सारे पासों समस्यावां ने घेर लिया है, तां दिल ना छड्डो, असी हां तुहाडे दुख वंडाउण लई। साडे एक्सपीरियंस्ड लॉयर रूपा बराड़ तुहानू टाइम ते वध तों वध बेनिफिट्स दवा सकदे हन, इत्थों तक कि फीस वी क्लेम मिलण तों बाद। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो रूपा बराड़, कॉल 416-991-5939, 416-999-5939।
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन, हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $1,00,000 दी इनकम जनरेट करदी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है, पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा, बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222, 416-265-2222.
4: From the Dave Tatla News Desk, locally covered, nationally connected.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1115
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तोहाडा मनपसंद सामान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तोहाडे अपने शहर विच आ गया अनाजमा। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी सामान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाजमा, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
6: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
8: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। और कोई सेवा?
9: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ चंट पढ़ दा, विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

होकर आया हूँ इंसानों की गलियों से, इंसानियत ना मिली इंसान ना मिला, इबादत के नाम के झंडे तो मिले, इबादत ना मिली भगवान ना मिला।

0: 416-817-6500.
1: एक लाइफ है जिसे लव है,
2: ये कहते मुझसे सब है,
3: और एक घर है जिसका ड्रीम है।

सुगंध वर्गा किस चरखे दी तंद वर्गा का उत्ते सजरी त्रेल वर्गा तो दिलां दे हुंदे मेल वर्गा बुड्ढे बाबल दे हाथ च डंगोरी वर्गा अमड़ी दी मिठी जही लोरी वर्गा गब्बरू ते चढ़ दी जवानी वर्गा किस प्यार नाल दित्ती होई निशानी वर्गा मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज व्यूज गीत संगीत हास्य ठट्ठे दे लैके रंग तुहाडे रूबरू लै

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
1: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: Solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade ang sang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pradesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chuke hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vada karan waste Desh Pradesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.

0: या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: मॉर्गेज दी दुनिया दे विच चमकदा सितारा प्रभदीप सिंह ई तुहाडी मॉर्गेज रिन्यू होने वाली है तुसी प्राइवेट मॉर्गेज स्टक हो गए हो ते बद इंटरेस्टेड पे कर रहे हो ए तुहाडी मॉर्गेज बैंकां नाल करवा के लो इंटरेस्टेड ते गारंटी नाल करवाउणगे ते नाल दी नाल लाइन ऑफ क्रेडिट भी तुहाडी बनवा देणगे ते $3500 तुहानू कैश वापस भी दिता जाएगा जां फिर बिजनेस लोन लेना जां लाइन ऑफ क्रेडिट बनाउणी है अज ही कॉल करो प्रभदीप सिंह 416-710-7524 416-710-7524 ते प्रभदीप सिंह होरां नू कॉल करो
2: Solution to promote your business. Desh Pardesh Prime Time Radio and TV. Tohade Ansang 24 Ghante Satto Din. Hun tak Desh Pardesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan vaste Desh Pardesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर टेक स्पिरिट हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही टेक स्पिरिट 905-621-4100 तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 905-621-4100 ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलने लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओह सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन, कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: सेंट्रल मिसिसागा दे रहण वालेओ, ए मौका ना गवाओ। बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स, जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम, हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय लई HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410, गो ट्रांजिट, शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटां दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ। अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com, BALLYMORE homes.com।